0: के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं।
1: सामिन, आप हमारे निशात को शॉर्ट वेव्स 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज़ के अलावा तुर्कसेट 3A ईस्ट और 4A वेस्ट समेत हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं।
0: आज हमारे प्रोग्राम में अदल तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद सिलसिलेवार प्रोग्राम फीचर और फ़लस्तीन की तारीख और पस पर्दा कहानियाँ पेश किए जाएंगे।
1: हमारी नशत इस पे मामूल अंकरा के मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे इख्तिताम पजीर हो जाएगी। आज आपकी मेज़बान मिसबा शाहीन
0: सगीर अहमद
1: और स्टूडियो में हमारे साथ तकनीकी तआवुन कर रहे हैं उसके खुराए।

वत्सल तरीन और असल जुग्राफियाई दस्तावेज है। लाखों छोटे रंगीन पत्थर के टुकड़ों को यकजा करके बनाई गई ये पिचकारी यानी मोजाइक सिर्फ जमालियाती महारत का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके अंदर मौजूद साइंसी और टिपोग्राफिकल दुरुस्तगी आज भी मौरखीन को हैरत में डाल देती है। इस नक्शे को बनाने वाले कारीगर ने यरूशलम यानी अलकुद्स को बिल्कुल मरकज़ में रखा था और शहर को परिंदे की आँख के जाविये से नक्श किया था, इस हद तक कि आप नक्शे पर यरूशलम का मशहूर दमिश्क गेट, सुतूनों वाली मरकजी सड़क कार्दो और चर्च ऑफ द होली सेपल्कर यानी कनाइस अल-क़यामा को वाज तौर पर देख सकते हैं। यहाँ तक कि नक्शे में साइंसी तफसीलात इतनी मजबूत हैं कि दरियाए उर्दुन में तैरने वाली मछलियों को दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में तैरते हुए दिखाया गया है। कई मुहक्किकीन के मुताबिक दरिया उर्दुन में मछलियों के रुख की यह तस्वीर बहिराए मुर्दार की शदीद नमकीनी की तरफ एक अलामती इशारा है। इसीलिए माहिरीन आसार कदीमा के लिए मदबा का यह मोजाइक महज माजी को दिखाने वाली एक तस्वीर नहीं है, ये पत्थरों पर लिखी हुई एक साइंसी दस्तावेज, एक खामोश गवाह और वक्त के सफर से हम तक पहुंचने वाला एक कुतुब नुमा है। जदीद खुदाइयों के दौरान मिलने वाले बहुत से आसार का मकाम इस नक्शे से मवाजना करके दोबारा दरियाफ्त किया गया। सदियों से भूली बिसरी कदीम सड़कों की सिमतें, गिरजाघरों के मकामात और यहाँ तक के बहिराए मुर्दार पर माल बरदार तिजारती जहाज़ों की मौजूदगी भी इन्हीं पत्थरों के दरमियान से दोबारा मंजर आम पर आई। बाज़ औक़ात पिचकारी का एक छोटा सा पत्थर तारीख की दर्जनों किताबों से ज्यादा वाज़े और हतमी मालूमात फराहम कर देता है। यकीनन फ़िलिस्तीन के नक्शों की कहानी सिर्फ मदबा तक महदूद नहीं है। रोमन सल्तनत के दौर के मशहूर रोड गाइड जैसे कि प्यूटिंजर मैप में यरूशलम को बहिरा रोम और अंदरूनी इलाकों को आपस में जोड़ने वाली बुनियादी शरियान के तौर पर दिखाया गया था। रूमी सड़कों को दिखाने वाला यह लंबा पार्चमेंट इस सल्तनत के कदीम तरीन नेविगेशन सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल होता था। कुरून वस्ता में ज़ायरीन रास्ता ना भूलने के लिए इन नक्शों का सहारा लेते थे, जबकि उस्मानी दौर में तैयार करदा तफसीली नक्शों और ज़मीन के रिकॉर्ड्स की बदौलत पानी के रास्तों, वक्फ इमलाक की ज़मीनों और तिजारती रास्तों को एक एक इंच करके रिकॉर्ड पर लाया जाता था। हर नया नक्शा जुग्राफिये में सिर्फ नए रास्ते ही नहीं बल्कि एक नया नुक्ता नज़र और फ़लसफ़ा भी शामिल करता था। शायद इसीलिए नक्शे कभी भी मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार नहीं रहे। किसी शहर को मरकज बनाना, किसी रास्ते को नुमाया करना या किसी जुग्राफियाई नाम को जिंदा रखना, ये सब कुछ ये बताता है कि लोग दुनिया को किस तरह से देखना चाहते थे और तारीख को क्या शक्ल देना चाहते थे। नक्शे कभी सिमत दिखाते थे तो कभी मुआशरों की इज्तिमाई याददाश्त की तामीर करते थे। आज एक चर्च के फर्श पर मौजूद वो पिचकारी हमें खामोशी से ये सरगोशी करती है, अगर कोई तहजीब तारीख के स्टेज से रुखसत भी हो जाए तो उसके पीछे छोड़े गए पत्थर बोलते रहते हैं। और कभी कभी मोज़ाइका एक छोटा सा पत्थर सदियों से भुलाया गया किसी कदीम शहर का नाम पूरी दुनिया को दोबारा याद दिला सकता है, क्योंकि याददाश्त सिर्फ इंसानों के जहनों में ही नहीं रहती बल्कि ये कभी किसी पत्थर पर, किसी पुराने रास्ते के निशान में और कभी सदियों से कदमों तले दबी इस पिचकारी में जिंदा रहती है। अगली किस्त में हम पत्थरों से निकलकर समंदर की तरफ चलेंगे। बहिरा रूम के साहिल पर हम एक ऐसी कदीम बंदरगाह की तरफ सफर करेंगे जहां हजारों सालों से ताजर, मल्लाह और काफले मिला करते थे। गजा वो कदीम शहर जो सिर्फ आज के वाकयात की वजह से ही नहीं बल्कि कदीम दुनिया के अहम तरीन और स्ट्रेटेजिक तिजारती मराकज़ में से एक के तौर पर तारीख का रुख बदलने वाला शहर है। अगले प्रोग्राम में गजा दुनिया की कदीम तरीन बंदरगाहों में से एक के उन्वान के साथ दोबारा मिलेंगे।
فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔